0: ये कौन सा? इधर है, उधर है, चार्टी का स्टेशन के लिए।
1: पर फास्ट स्लो
0: कौन सा भी चलेगा?
1: हाँ ये ये ये वाला पांच नंबर नीचे नीचे लेफ्ट वाला।